0: और मैं सभी जो लिसनर हैं, आप लोग तो सुन ही रहे हो पर जो रेडियो नहीं सुन रहे उनको भी प्लीज़ आप मैसेज पास ऑन करो कि 22nd of August सभी को आना है। ये एक फैमिली इवेंट है तो अपने फैमिली को भी लाइए, अपने फ्रेंड्स को भी लाइए और जो लोग भी आ सकते जिन्होंने, मैं श्योर 100% गारंटी देती एवरीबडी विल एंजॉय। तो प्लीज़ कम टेम्पल्टन हॉल 22nd of August from 5:30 एंड हम आगे भी कुछ बात करेंगे स्पॉन्सर के लिए। अभी मैं जस्ट पास ऑन करती हूँ अपने दूसरी टीम को और वो अपना इंट्रोडक्शन दे। थैंक यू।
1: नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम सीमा और मैं आप सबको हरियाली तीज के लिए इनवाइट करने के लिए आई हूँ। शालिनी दीदी और उनकी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वील ब्रिंग लॉट्स ऑफ गुड परफॉर्मेंसेज, लॉट्स ऑफ सरप्राइजेज और फ्यू डेज ही रह गए, 22nd को है, सैटरडे को इन टेम्पल्टन हॉल। सो प्लीज़ डू कम एंड वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू सी यू देयर। थैंक यू।
2: चलो भावना जी।
3: नमस्ते फेसबुक लिसनर्स, मैं भावना, मैं आप सबको इन्वाइट करना चाहती हूँ। ओनली 3 more days टू गो फॉर दिस इवेंट एंड आई थिंक आप सारे तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि सबको पता है कि इवेंट हमारा हरियाली तीज का है तो हमें खूब अच्छे से रेडी होके आना है। आप सब बहुत एक्साइटेड है और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है आप लोगों को वहाँ पे देखने के लिए। तो जस्ट 3 more days टू सी यू गाइस ओवर देयर।
2: जी हाँ, नेक्स्ट सहिला जी, आप कुछ शेयर करने वाले?
4: हेलो क्राइस्टचर्च, नमस्ते आप सबको। मेरा नाम साहिला आनंद है, आई एम द फाउंडर ऑफ हर ब्यूटी एंड मैं आप सबको इनवाइट करने आई हूँ कि 22nd of August को टेम्पल्टन कम्युनिटी सेंटर में आप सब आइए और हरियाली तीज फेस्टिवल को इंजॉय करें। इसमें आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को सबको लेकर आएँ और इस प्रोग्राम में आप सब के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी रहेंगे और काफ़ी गिव अवे भी हैं, तो आप प्लीज़ आइए और वहाँ पर हम सब आपको मिलेंगे।
2: जी हाँ, और अमित जी आप बताइए।
5: फर्स्टली थैंक यू विनेश जी वेरी मच फॉर इनवाइटिंग एंड लेटिंग अस प्रमोट अवर इवेंट इन जलसा फीजी रेडियो, सो थैंक यू वेरी मच। ऑन 22nd of August एज एवरीबडी हैज सेड, वी हैव अ वेरी लाइक अ फैंटास्टिक इवेंट कमिंग। लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज गॉन बिहाइंड इट, शालिनी जी इज लीडिंग इट एंड द होल टीम इज बिहाइंड हर। देयर विल बी it's a free event, it's a family event, so basically we are having like things for everyone, right from children to men, and obviously it's a women's celebration as well, so please come. I request everyone to come there. जैसे हिंदी में कहेंगे ना कि वहाँ पे बाहर छाई होगी, तो हम भी आके थोड़ा बाहर का थोड़ा मजा ले इस तरह से। थैंक यू।
2: जी हाँ, और हरियाली तीज की बात करती है, यू नो इट्स मोर लाइक लेडीज हम फेस्टिवल कहेंगे बिकॉज दैट्स व्हेन जो लेडीज है तैयार हो जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, और इट्स बोथ मैरिड एंड अनमैरिड लेडीज, और जो मैरिड लेडीज है जितना मैंने सीखा पढ़ा या सुना हूँ, बिकॉज मैं तो इंडिया का नहीं हूँ
0: और इंडिया
2: की, बट इन फिजी ये सब बहुत कॉमन नहीं था, तो हम आई थिंक वी आर क्वाइट फॉर्चुनेट कि वी आर इन हियर जहाँ पे ये सब जो फेस्टिवल से नाउ वी आर लर्निंग लोरी मेला एंड वो सब हम यहीं सीख रहे हैं और हमारे जो दोस्त हैं उनसे सीखते हैं, सुनते हैं और रिसर्च भी करते हैं उसी कारण और पता लगाते हैं कि व्हाट इज़ दिस फेस्टिवल अबाउट। और जो मैंने पढ़ा तो मेरे ख्याल से वही है, जो मैरिड लेडीज़ है वो लोग अपने जो पतिदेव है उसके लिए पूजा करते हैं कि वो आपके साथ साथ रहे और आपको छोड़ के जाए नहीं।
0: वो बात लगी कि हम लोग छोड़ के चले थे।
2: जी हाँ, और जो सिंगल लेडीज ऑफ कोर्स उनके मन में अपना विचार रहता है बिकॉज एक समय में ऐसा भी होता है स्वयंवर वगैरह होता है एंड दे गेट अ चॉइस किसको वो पसंद करेंगे, लेकिन कभी कभी चॉइसेस नहीं रहता है, सो आई थिंक दैट्स व्हेन वो पूजा पाठ करती हैं ताकि उसको मन चाह पति मिले, बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर, वो तो काफी पर्टिकुलर होते हैं ना चॉइसेस को लेकर।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो that's something with Hariyali Teej, और religiously अगर देखा जाए then of course it relates to Parvati और Shiv ji, Parvati बिछड़ गए थे and then उनको unite होना था and then she had to take like 107 जो बार उसने जन्म लिया है एंड देन 108 times एंड दैट्स व्हेन शी वेल दे गॉट टुगेदर, तो उसका कहानी अलग है, कभी समय रहेगा तो उस पर बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे हरियाली तीज। तो शालिनी जी आपने तो अब काफ़ी सालों से हरियाली तीज करते हैं और कुछ कुछ टीम मेंबर्स सही में कुछ नए जुड़ते हैं विच इज़ गुड बिकॉज हमारा जो कम्युनिटी तो बढ़ रहा है, एवरी डे वी सी न्यू फेसेस विच इज़ ग्रेट, तो क्या कुछ नया इस समय?
0: सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हो हरियाली तीज के बारे में, इतना तो हमने भी

0: रिसर्च नहीं किया कि बट हाँ ये सही है कि शिव जी से हम लोग यही हमारा ये कल्चर है कि हम शिव जी से प्रेयर करते हैं, उस दिन फास्ट रखते हैं कि हमें अनमेरिड लड़कियां कहती हैं कि हमें मनचाहा वर मिले और शादीशुदा करती है कि उसकी लंबी आयु के लिए. आई डोंट नो लंबी आयु होती है या नहीं होती है, मनचाहा मिलता है या नहीं मिलता है, बट ये हमारा कल्चर है और हम उसको फॉलो करते हैं और हमें करना भी चाहिए. हर किसी को अपना कल्चर फॉलो करना चाहिए. सो जैसे आपको पता है कि हरियाली तीज जैसा आपने बोला मेनली लेडीज के लिए होता है, व्रत लेडीज के लिए होता है आई नो, बट सेलिब्रेशन सबके लिए होता है. तो इसलिए हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं. बहुत सारे लोगों को ये बहुत कंफ्यूजन है कि ये लेडीज का प्रोग्राम है. नहीं, ये सबका प्रोग्राम है. जेंट्स, बच्चे, एवरीवन मोस्ट वेलकम. और सभी के लिए कुछ ना कुछ वहाँ होगा. और जैसा आपने बोला टीम, यस, अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता. जब तक आपके पास एक मजबूत अंडरस्टैंडिंग और सुलझी हुई टीम नहीं होगी, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो. और मैं शिव जी ऊपर वाले से बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब बहुत अच्छे हैं. और मैं सिर्फ मैं उनको डायरेक्शन देती हूँ और वो काम करते हैं. तो इसीलिए ये इवेंट सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबका है सबसे पहले. उसके बाद कोई भी इवेंट विदाउट स्पॉन्सर नहीं होता. सबसे पहले तो मेहनत मांगती है, तो मेहनत मेरी टीम है जो मेहनत कर रही है और मैं तो कर ही रही हूँ. दूसरा फाइनेंशियल हमें स्पॉन्सर्स के बिना हम कुछ नहीं कर सकते. इसलिए मैं एक थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने स्पॉन्सर्स के लिए. सबसे पहले हमारे प्लेटिनियम स्पॉन्सर शर्मा हाउस, गौरव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. वो ऐसे बंदे हैं कि उन्होंने आगे से बढ़ के मुझको अप्रोच किया कि मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ. तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी कम्युनिटी में हम इंडिया से, हमने इंडिया को छोड़ा है, हम यहाँ आए हैं, लेकिन हमें आज भी हमारे अंदर वो संस्कार हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प करें. तो ये बहुत अच्छी बात है. दूसरे हमारे ए टू जेड अकाउंटिंग कंपनी, वो वैसे तो कहने को मैं उसकी शेयर होल्डर हूँ, बट वो मेरे हस्बैंड की कंपनी है. सो अगर किसी को भी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ये हमारे दो प्लेटिनियम स्पॉन्सर है. उसके बाद हमारे गोल्ड स्पॉन्सर्स आते हैं, उसमें बेलीज से हैं करण शेवड़े. जिसको भी घर सेल करना है, बाय करना है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट हिम. उसके बाद एस के एम मॉर्गेज सर्विस, उधर से संदीप खन्ना एंड हितेश शर्मा जी. वो हमेशा हितेश भैया, सबसे पहले उनका फ़ोन आया, भाभी मैं हूँ. मैंने कहा हाँ भैया. तो मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं ब्लेस्ड हूँ. उसके बाद हमारे पास इशप्रीत का तो मैं हमेशा बोलती ही हूँ कि वो शुरू से ही मेरे साथ हैं. ही इज़ अ वेरी नाइस गाय. जो भी आपको इंश्योरेंस रिलेटेड, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट हिम. उसके बाद हमारे पास आते हैं जी लैंड इमिग्रेशन, वीज़ा संबंधित जो भी किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम हो या जो भी अपने लोग हैं जिसको कोई भी इशू हो, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू इतेश. सो थैंक यू सो मच माय गोल्ड स्पॉन्सर्स एंड प्लेटिनियम स्पॉन्सर्स. और भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स ने हमें बहुत हेल्प करी है, लेकिन आगे और सब आपको एक्सप्लेन करेंगे. और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि ये मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं, ये फैमिली इवेंट है, अल्कोहल फ्री इवेंट है, फैमिली इवेंट है. हमारी थीम येलो एंड ग्रीन है, बट बिल्कुल पैसे खर्च मत कीजिए. अगर किसी के पास है तो पहन के आइए, अगर किसी के पास नहीं है तो कोई भी कलर चलेगा. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप येलो एंड ग्रीन में ही आए. सो मैं पास ऑन करती हूँ माइक और आगे प्लीज सब एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू शालिनी. सबसे पहले तो सभी स्पॉन्सर, बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो सभी स्पॉन्सर का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं कुछ स्पॉन्सर का नाम लेना चाहूँगी. फ्लॉन्ट कलेक्शन, जिनके पास की बहुत नाइस ज्वेलरी कलेक्शन है, अगर आपके पास है या कुछ आपको नया अपडेट करना है या कुछ भी, आप बिलीव मी, आप अगर वहाँ जाओगे तो बहुत ही अच्छी कलेक्शन है उनके पास, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर. दूसरा मैं कहना चाहती हूँ रुक्मणी सिल्क, रुक्मणी सिल्क के पास एक से एक साड़ी है जो अभी नई

0: सिल्क साड़ी है और यू नो लेडीज के पास जितनी भी साड़ी हो उतनी कम ही लगती है. एवरी टाइम वो देखती है तो सोचती है अरे यार क्या पहनूं, भले कि पूरा कबर्ड फुल है बट उनको हमेशा जैसे लाइक. तो वो चॉइस आपको रुक्मणी सिल्क के पास मिल जाएगी. और उन्होंने काफ़ी कुछ स्पेशल भी रखा है, डिस्काउंट वगैरह. तो आप
1: स्पेशल फॉर
0: अगर,
1: हरियाली
0: हाँ,
1: तीज।
0: स्पेशल फॉर हरियाली तीज, तो आप अगर आप उनके काउंटर पे ज़रूर जाना तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या क्या रखा है. तीसरा मैं लेना चाहूँगी इलाइट ड्रेस, जो कि
1: इलाइट वियर,
0: इलाइट वेयर. तो उनके पास जो है पंजाबी ड्रेस है जो कि ला रही है रूबी, और उनके पास काफ़ी सारी हैं. और उन्होंने कहा है कि वो एकदम मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कॉस्ट में वो अपना सारा कुछ जो है काफ़ी मतलब अच्छी
1: सेल
0: अच्छी
1: करेंगी।
0: कलेक्शन है उन्होंने सेल करना है. तो आप ज़रूर जाइए और उनसे भी उनका मतलब प्रमोशन पूछिए कि क्या है. तो उन्होंने भी कहा है कि मैं स्पेशल डिस्काउंट वो देंगे, तो आप वहाँ भी जाइए. और रहा हरियाली तीज, तो मैं देख रही हूँ कि हरियाली तीज की टीम तो कर रही है पर उसका पूरा श्रेय जो है शालिनी गुप्ता के लिए जाता है. वो इतना मेहनत कर रही है ना, रोज बोलती है भाभी अब क्या अब क्या. हमने कहा भाई कुछ नहीं, ऊपर वाले पे छोड़ दो, बहुत जोरदार और जबरदस्त होने वाला है. तो वहाँ पर जो है प्लीज़ सभी लोग आइए और कोई भी मिस मत कीजिए. अपने फ्रेंड फैमिली सबको बोलिए और सब लोग आइए और इन्जॉय कीजिए. और मिसेस हरियाली तीज का वहाँ पर एक कंपटीशन है जो कुछ अच्छा सवर के सच के आएंगे उनके प्राइज रखा हुआ है. तो मैं चाह रही हूँ कि हर कोई आप जो है एकदम 16 श्रृंगार और सब कुछ, तो वहाँ की जो हरियाली टीम है वो डिसाइड करेगी कि किसको मिलेगा. तो मैं चाहती हूँ जो भी सुन रहे हैं उनको सभी को मिले. तो प्लीज़ बहुत अच्छे से तैयारी करके आइए और आना है ज़रूर. ठीक है, थैंक यू.
2: थैंक यू सुशीला जी। तो आपने कहा मिसिज, तो सिर्फ मिसिज ही रहेगा या
1: मिस्टर भी होगा? मिस्टर भी,
2: मिस्टर मिसिज,
1: मिस्टर हरियाली तीज भी होगा एंड मिसिज हरियाली तीज भी होगा. जैसे मैंने बोला है कि ये प्रोग्राम फैमिली प्रोग्राम है तो इसमें खाली लेडीज का कुछ नहीं होगा, जो भी होगा दोनों का होगा. अगर बेस्ट ड्रेस का लेडीज को मिलेगा तो बेस्ट ड्रेस का मिस्टर को भी मिलेगा एंड बेस्ट ड्रेस किड्स को भी मिलेगा. फिर बच्चे कहाँ जाएंगे ना, जब पति पत्नी आएंगे तो इसीलिए सभी को मिलेगा. तो सब ट्रेडिशनल ड्रेस में आइए, हो सके तो हमारी थीम में आइए. अगर नहीं भी हो सका, कोई कंपलसरी नहीं है, तो गिफ्ट वहाँ सभी के लिए होंगे. थैंक
2: जी,
1: यू.
2: ठीक है। और नेक्स्ट किसके पास लिस्ट है? भावना जी,
3: भावना जी आप बताइए।
4: तो मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि हर इवेंट जब होता है तो उसमें डेकोरेशन भी होती है. तो इस इवेंट में जो डेकोरेशन कर रहे हैं हमारे फैनफेयर जी हैं जो कि सिल्की हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं डेकोरेशन वगैरह के लिए. हमारे यहाँ पे खाने का बहुत अच्छा रहेगा. जैसे कि किसी भी आप इवेंट में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं कुछ खाने को तो मिल जाए, क्योंकि जब सब इवेंट में आ रहे हैं तो कोई नेचुरली घर जाके तो वापस नहीं खाना खाएगा. तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे आपको मिलेगा क्या कहते हैं डी सॉल्ट का फूड है जिसको आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं. दे आर गिविंग लाइक अ ट्रेडिशनल फूड लाइक स्ट्रीट चाट और सम थिंग्स भी उनके पास रहेंगे, तो आप लोग वो भी इंजॉय वहाँ पे काफ़ी कर सकते हैं. और अगर किसी को अगर जैसे इवेंट के लिए तैयार होना है कुछ है तो हमारे यहाँ पे स्पॉन्सर है हमारे क्या कहते हैं चॉइस हेयर एंड ब्यूटी, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. उनका वहाँ पे भी रहेगा स्टॉल और आप रेडी तो हो ही जाएंगे अच्छे से. बाकी एज सच जैसे आप जानती हैं कि ये फैमिली इवेंट है तो प्लीज़ कोशिश करिए कि बच्चों को हस्बैंड के पास ना छोड़ के आए, सबको लेकर आएँ. तो जब सब मिलकर आएंगे तो ये फैमिली इवेंट हमारा तभी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हम लोग सारी फैमिली चाहते हैं कि यहाँ पर आए इन्जॉय करें अच्छे से. थैंक यू
2: जी. और भावना जी, ये क्या आप कंपटीशन में भाग ले रहे हो?
1: टीम इज नॉट,
4: नहीं यहाँ पे टीम अलाउड नहीं है, तो हम लोगों को सिर्फ देना अलाउड है, लेना अलाउड नहीं है. मैं हमेशा यही सोचती कि हम लोग मिसिस रियलिटी देते, हम भी तैयार होके आते हैं, कभी हम भी स्टेज पे चढ़ गए ओ हमें मिला, बट हमें नहीं मिलेगा. हम बैक ऑफ द स्टेज, हमें बहुत अच्छी शाबाशी मिलती है, हम लोग उससे बहुत खुश है. तो हम लोगों को उससे बहुत अच्छा लगता है, हमें नहीं लगता कि उससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए सबके सामने.
2: चलो अमित जी,
5: टू बी ऑनेस्ट वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि शालिनी दीदी ये इवेंट कराते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें बहुत बहुत टेस्टी खाना खाने को मिलता है. शी डज अ अमेजिंग पार्टी लाइक आफ्टर पार्टी इवेंट के बाद, तो उस चीज के लिए हम हमेशा लुक फॉरवर्ड करते हैं कि वाह.
1: लेकिन वी

0: thank our DJ Botanics. Because party hai to DJ to hona banta hai. Or thank you so much for that. Or Menzies as well. Or thank you so much to our media partners, Jalsa Radio, Sadewala Radio, and RJ, KJ Locals. Thank you so much.
1: Thank you, Amit ji.
2: Yeah, so firstly, festival partners, it's a festival, it's a celebration. So obviously we have Yogi Photography, that they will be our official photographer for the event. So that's really great. One thing I'm also in charge of, Shalini has made me in charge of, is obviously a raffle draw. So there'll be obviously lots of lovely prizes to be won there. So I request everyone to bring gold coins and buy lots of raffle tickets. I still remember how happy and pleased people were to get those beautiful prizes for like a very small ticket value of $2, I think. Yeah,
3: three prizes on
2: that. Yeah, so lots of prizes there. So yeah, please come and participate in the raffle draw.
1: जी हाँ, और अगर आप बाहर से कहीं सुन रहे हो तो जो हम गोल्ड कॉइन जब बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है
3: सोने का सिक्का
0: 24 कैरेट
1: हम फिजी में संगा मोली बोलते हैं ना जो डोला कॉइन होता है जी हाँ तो नो इट्स गुड इट्स अमेजिंग और आई थिंक रेफरल का एक खास बात ये भी होता है दैट द होल काइंड ऑफ जो लोग होते हैं एवरीबॉडी गेट्स इन्वॉल्व्ड तो रेफरल डज डू दैट एंड पीपल गेट एक्साइटेड और जब ड्रॉ होता है तो फिर बस चेहरे देखना पड़ता है जिसको मिल गया है वो हंसता है और जिसको नहीं मिलता तो वो भी मुस्कुराता है क्लिप करता है लेकिन पता चल जाता ना कि उन्हें भी चाहिए जी हाँ तो ठीक है ऑल द बेस्ट ट्राई योर लक इन डू कम और एक चीज और है व्हेन पीपल कम डू दे हैव टू ब्रिंग कैश या एफ पोस्ट चलेगा
2: ब्रिंग कैश
3: एफ पोस्ट नहीं है ब्रिंग कैश और नहीं फूड के लिए एफपोस होगा वहाँ रुकमणी सिल्क के पास भी होगा अगर किसी के पास नहीं होगा तो ऑन अकाउंट यू कैन डू सो और दूसरा ये है कि बहुत सारे हैम्पर होंगे एक नॉर्थ फूड सबवे की तरफ से हमें हैम्पर मिल रहे हैं तो अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर किसी भी गेम में या कोई भी कॉम्पिटिशन आप जीतते हैं तो हो सकता है कि आपको नॉर्थ फूड सबवे का वाउचर मिले और दूसरा एक इशप्रीत फाइनेंस की तरफ से भी एक हैम्पर आने वाला है हरियाली तीज का एक हैम्पर होगा और सो मैनी गिफ्ट्स किड्स के लिए फेस पेंटिंग आने वाली है और हमारी एक स्पॉन्सर्स उसकी बेटी अभी रोने लगी थी वो बाहर है तो उसके लिए मैं बोलती हूँ कि वो किसी भी लेडी को पोस्ट डिलीवरी या जिस टाइम उसके डिलीवरी से पहले या वैसे ही आपको अगर कोई भी मसाज की ज़रूरत है तो हर ब्यूटी प्लीज हर ब्यूटी को कॉन्टेक्ट कीजिए शी इज रियली रियली गुड फॉर मसाज एंड वेरी रिजनेबल प्राइजेस सो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं सो उनका नंबर मेंशन अगर किसी को भी जरूरत है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी मैं उनका नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगी और बच्चों के लिए फेस पेंटिंग आ रही है सो मेरा कहने का मतलब है कि हरियाली तीज में आपको बच्चे से लेकर बड़े तक बच्चों के पापा बच्चों के मम्मी और जो ग्रैंड पेरेंट्स है सबके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा बहुत एक्साइटेड गेम्स आएंगे कपल्स गेम आएंगे सो मिलते हैं जल्दी ही क्राइस्टचर्च में हरियाली तीज टेम्पलटन हॉल
1: 22nd October.
4: वो स्टॉल लगा रही है रुक्मणी सिल्क तो वहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू लेटेस्ट सिल्क साड़ी और सिर्फ वो साड़ी सेल नहीं कर रही है उन्होंने कुछ कंपटीशन भी लाइक प्रमोशन रखा है स्पेशल डिस्काउंट रख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत जो लेडीज साड़ी पसंद करती है लेना उनके लिए काफ़ी रिजनेबल प्राइस में वहाँ पर साड़ी मिल सकती है तो जैसे कि शालिनी ने कहा कि वहाँ पे एफपॉस की सुविधा होगी बट अगर कैश भी रखते हैं तो इट्स इजी एक तो गोल्ड कॉइन तो रखना ही है रेफरल टिकट के लिए ताकि जो रेफरल टिकट सेल कर रहे हैं उनको इजी होए और आपको भी इजी होगा और वहाँ पे सिर्फ स्टॉल तो है फूड भी है बिलीव मी वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है और आप देखोगे कि इतने नए चेहरे जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं जो कभी स्टेज पे उन्होंने डांस नहीं किया बट हरियाली तीज ने उनको मौका दिया और बहुत वो लेडीज़ भी बहुत एक्साइट

0: एक्साइटेड है, और आप देखें कि परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी जाएगी, और उसके बाद जो है जब सारी परफॉर्मेंस हो जाएगी, गेम हो जाएगी, ओपन डांस फॉर एवरीबडी, सो डीजे डांस में बिलीव मी मैंने सबको वहाँ पे थिरकते देखा है. ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा डांस कर तो नहीं, बट इन्जॉय इन्जॉय इज़ अ मेन. और ऐसे प्रोग्राम में बस इन्जॉय के लिए हम जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर आइए और बिलीव मी एवरीबडी विल इन्जॉय.
1: जी हाँ, और भावना जी मॉडलिंग का क्या चल रहा है अभी? फैशन शो.
2: यस,
3: वो तो मतलब जैसे कि सब जानते हैं कि हमारे हरियाली तीज पे रहता ही है, और सबसे बड़ी चीज है हमारे हरियाली तीज पे आपको हर साल की तरह इस साल भी झूला मिलेगा, जिसमें कि आप अपने वाइफ्स को झूला सकते हैं. ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है हस्बैंड्स के लिए कि एक बार उनको जरा झूला झुला दे दोबारा से आउट ऑफ द कंट्री आके. तो ये बहुत अच्छा रहेगा. बट दिस इज अ सच अ फ्री इवेंट और द फैमिली इवेंट. डोंट फॉरगेट दिस थिंग. आपको इसमें आने के लिए कुछ भी पे नहीं करना है, बस अब आपको आने के लिए रेडी होना है और कुछ नहीं. वेदर देख के मत थोड़ा सा करिएगा, क्योंकि ये इनसाइड है, हॉल के अंदर है, तो हर तरह से सेफ है. तो आई जस्ट कि मतलब आप सब आइए और इंजॉय करिए उस दिन हम लोगों के साथ में.
1: जी हाँ, जैसे आपने सुना कि फैशन शो भी होने वाला है, तो डोंट मिस, डू कम और देखिए. और परफॉर्मेंसेस वगैरह तो रहेंगे. इज देयर गोइंग टू बी जो फोक सॉन्ग्स आप लोग गाते हो? आई थिंक शालिनी ने आप
2: हमारे इवेंट में एक ग्रुप डांस होता है एवरी ईयर, उसमें कुछ कुछ लेडीज चेंज होती हैं, कुछ कुछ वही हैं डे वन से. आपको मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है उस टाइम, डजंट मैटर वो डांस कैसा कर रही हैं, डजंट मैटर वो स्टेज पा रही हैं, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. 60+ 70+ लेडी एज में, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि नए लड़की को, नए यंग गर्ल्स को, यंग बॉयज को सब चांस देते हैं. जो 50+ हो जाती हैं उनको कोई चांस नहीं देता अपनी स्टेज पे.
1: आप लोगों को पता चल जाता ना 50+ है.
2: कोई चांस नहीं देता.
0: आपके सामने बैठे.
2: तो इसलिए मैंने सोचा आप देखना कितना अच्छा डांस कर रही हैं सब. उनको मतलब उनको मैं मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब वो डांस करते हैं. तो आप आइए, आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे. दूसरा, हमारे सारे जितने भी स्टॉल वाले हैं कोई ना कोई गिफ्ट पब्लिक के लिए रख रहे हैं. हर कोई चाहे तो वो कोई ड्रॉ निकालेंगे अपने स्टॉल पे, या कोई परसेंटेज आपको ऑफ देंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, पर कोई हर बंदा आपको कुछ ना कुछ देगा. तो इसका ये मतलब है कि हमारे इवेंट में जो भी आएगा कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएगा. तो आइए और हाथ भर के जाइए. तो
0: और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि आप स्टेज पे देखोगे कि वहाँ पर सास भी डांस कर रही है और बहू भी डांस कर रही है
2: साथ में.
0: और भगवान ने चाहा तो कुछ सालों में पोती भी डांस कर रही है.
1: सासा डांस कर रही है, उधर देख के डांस कर रही है.
4: But Vinay ji, that proves that this is actually a true community event. Yeah. This is what we call it, a community event, bringing the entire community together. I think, and that it takes only one person to take lead, and everybody, a good team to like you know support. But that's I think that's a celebration of a community event as well. That's fantastic, though.
1: जी सुनने में काफी अच्छा लग रहा है. आई एम श्योर जितने लोग सुन रहे हैं दिल बी प्रीटी एक्साइटेड, एंड ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग रेडी, बिकॉज प्राइजेस भी है ड्रेसिंग के लिए और नाचने कला भी, यू नो गुड द डीजे एंड एवरीथिंग है, और स्टॉल्स भी है. अगर आपके पास पैसे आप सोच रहे होंगे कि कैसे खर्च करना है, देन सी यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, तो जरूर आइए. एंड सीमा जी, वैसे तो आप काफी सिंगिंग करते हो, डांस भी करते हो, बट डू यू सिंग लाइक ये हरियाली जो फोक जो गाना होता है वो सब गाती भी?
5: Not really folk, पर हाँ Bollywood.
1: Bollywood तो आप गाते हो तो पता है. जी हाँ, so which is good.
2: गाते
5: तीज.
2: सावन के झूलों ने मुझको.
5: सावन का महीना पावन करे शोर.
0: शोर नहीं बाबा, शोर.

0: Yeah, very nice. Yeah, just takes us back. कौन था उसमें? Was it Nutan? Nutan and Sunil Dutt, ना?
1: Yes.
0: मुझे उस गाना याद है. Movies थोड़ा मोरा याद है. बहुत साल पहले देखे थे. So हाँ, so no, those days, those stories, splendid. Or here we are. तो चलो, हमारा समय काफी हो चुका है और आज तो वैसे भी Tuesday and तरी सर्दी है बाहर. But definitely Saturday को नहीं रहेगा because you have sorted out the weather, ना?
2: Yes.
1: स्टेज पे बहुत हॉटनेस होगी तो और हॉल में भी बहुत हॉटनेस होगी.
0: तो चलो, हम यहीं पे समाप्त करते हैं और जाते जाते अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम ईच टीम मेंबर, फिर हम यही खत्म करेंगे. लेकिन डोंट फॉरगेट, याद रहे डेट आपको, आपकी जो सैटरडे 22 अगस्त और पहुंचना है टेम्पलटन हॉल, सभी को मालूम है कहाँ पे, 64K Crowd, कांट बी मिस. तो चलो शालिनी जी, शुरू हो जाए.
3: Thank you so much, Jalsa Fizzy Radio, Rajneeta and Vinish Bhaiya. Thank you so much again. See you there and see you all there, Crashers ki public. Sabko, aap sab aaiye aur bas wahan milte hain sabko. Okay, bye.
0: Sushila ji.
4: ओके, मैं एक बार फिर से आप सभी से विनती करती हूँ कि आप प्लीज़ ज़रूर आइए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स को भी लाइए. और बिलीव मी, जैसे मैंने कहा, कोई भी डिसअपॉइंट नहीं होगा. एवरीबडी विल एंजॉय देयर. सी यू देयर. बाय. थैंक यू.
0: सीमा जी,
1: लास्टली अगेन आई विल इनवाइट यू ऑल फॉर हरियाली तीज 22nd of August, venue Templeton Hall, और स्टार्ट हो रहा है 5:30 onwards. सुंदर सुंदर बन के आओ, अच्छे से तैयार होके आओ और हम आप सबको वहाँ मिलते हैं.
0: जी, और ये वीडियो आप हितेश को दिखाइए बिकॉज हम उन्हें भी वहाँ देखना चाहते हैं.
1: जी बिल्कुल.
0: जी हाँ, भावना जी,
5: मैं सबको थैंक यू करना चाहूँगी. प्लीज, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू ऑन सैटरडे एंड वी आर ईगरली वेटिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज. Please come on Saturday, 22nd August, sharp at 5:30. Thank you.
0: Thank you. And jate jate yani, Amit ji.
6: Thank you, Vinesh ji. Thank you, Jalsa Fiji Radio, for giving us the opportunity to promote our event. You're very, very cooperative. Again, as the team member said, I welcome the entire Christchurch people to come and enjoy our event. Thank you.
0: Thank you, Amit, and we would like to thank Nico for helping me with the video today. Thank you, Nico. Though he's still learning to understand what we are saying, but I'm sure he gets the gist of what we are up to. It's a festival, and obviously you should show when we start talking about it. Our saath me message from Rajneeta, all the best to the team and have fun. So chalo, ab jaise poster dekh rahe ho to wahi pe aapko aana hai Templeton Hall. This is Hariyaldi Teach 2026. Jaise aap dekh rahe ho, Shalini and her team is fully prepared. Aapko aana hai and just have good fun. Aur jaise Shalini me mention kiya ki iske jo Hariyaldi Teach ke piche jo kuch aur bhi bahut kahaniyan hoti hai, and I think shayad aap log India mein 3 days ऐसे कुछ बनाते होंगे ना, अलग अलग जो नाम होता है, तो कभी और मौका लगा तो जरूर हम उस टॉपिक भी छेड़ेंगे, उसमें भी बात करेंगे. लेकिन आज जी आज तो काफ़ी रात हो चुकी है और ऑब्वियसली आपको घर पे जाकर खाना वगैरह भी बनाना है, तो विल लेट यू नो. सॉरी, लेट यू गो. सभी सभी को खाना बनाना पड़ता है ना, तो सभी को आधा वैसे डिस्काउंट चले जाते हैं. आधा वैसे स्पॉन्सर को बतला दो हमारे. No, it's always good fun. जब भी हमारा अपना प्रोग्राम होता है क्राइस्टचर्च में, देन इट इज फन टू बी पार्ट ऑफ इट. और हम तो हमेशा जाते हैं हरियाली तीज, एंड डेफिनेटली विल बी गोइंग देयर एंड एंजॉयिंग, जो लुफ्त हम उठाएंगे. आप भी भूलिए नहीं, आप आ जाइए 22 अगस्त को 5:30. तो चलो, हम एक गीत आपके लिए छोड़े जाते हैं, उसके बाद में मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और दिन. और जो लोग हमारे साथ फ्रिक्वेंसी में साथ दे रहे हैं, तो आप गीत जो सुनते रहिए, शायद हमारे पास एक या दो गीत रहेगा, उसके बाद में आज समाप्त करेंगे. बट एवरी सैटरडे की तरह हम जुड़ जाएंगे 5:30 PM आपके साथ में, और वीडियोस तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जैसे हमें मौका मिले, या कोई इन्फॉर्मेशन हो, चाहे कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन हो या समथिंग जिससे हमें पता चले आपका लाभ हो, वी विल ट्राई टू ब्रिंग दैट टू यू.

जी आपको पुनः स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर अविनेश और ये जो सुंदर से गीत हम आपको सुना रहे थे हरियाली तीज की और इससे पहले जो टीम थी उससे आपने सुना जो प्रोग्राम के विषय में। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको सुनाते हैं नवरात्रि वाला सॉन्ग, क्योंकि मैं बस सोच ही रहा था कि अब तो जो टाइम चेंज हो रहा है अब धीरे धीरे हम नवरात्रि की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सॉन्ग आपसे शेयर करते हैं और सॉन्ग के बाद में हमारे पास देखते हैं कितना समय हम बात करेंगे और हो सकेगा तो एक सॉन्ग और भी हम जाते जाते आपको सुनाने की कोशिश करेंगे।

जी हाँ, आशा है कि गीत आपको पसंद आया हो। मैं पहली बार में भी सुन रहा था, मैंने बोला अच्छा चलो नवरात्रि की जो पर्व आने वाली है तो इसके लिए हम ये गीत आप तक सुनाते हैं। एक गीत और हमारे पास है जो हम आपके लिए पेश करना चाहेंगे, शायद हमारे पास ये आखिरी जो गीत रहेगा। तो हम अलविदा चाहेंगे और सरड को फिर हम जुड़ जाते हैं 5 PM, तो ज़रूर हमें फ्रिक्वेंसी 96.9 पे आप सुनते रहें। और जो सिस्टर रेडियो स्टेशन से जो हमारे जो शेयर करते हैं हमारा जो ये ब्रॉडकास्ट, तो उसको भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे। तो चलो हम ये लास्ट गीत जो आपके लिए छोड़ते हैं, उसके बाद में हम फिर मिलेंगे जब जैसे हमें नेक्स्ट समय मिलता है।